खसमे पाए, गुरमत किसनो अगले हो वजो भेदो ना खाए, खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए, वजो गुवाए अगला मोहिमो पाना खाए, जिस जाता कामना तिसका ही ऐसा बात।

अपनी हरता के पारावा आप कराए साक्ती फिर आप कराए मा इकना गली जंजीरी एक तुरी चढ़े बिसिया

0: रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वास तेरा घर भला
1: तेरे घर आनंद वधाई तुद घर माण महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दसन दास

चेतियावन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रहा। देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले भोलो जी वाहे गुरु भोलो जी। सिखा नू सिखी दान के सुदान रहत दान। बाबेग दान विसाह दान भरोसा दान धना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगी अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखाप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नू बख्शो हे निमाणिया दे माण नितणिया दे पाण न्योटिया दियोट ताने ताने। श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र अस्थान। सचखंड श्री हरमंदर

अपने प्रीतम के हम बिरह जाले, फिर बेहून कत है सुख पाए, जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदण खूही मंद अकेले, ना को साथी ना को बेले, कर कृपा प्रभ साध संग मिले, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेले, वाट हमारी खरी उड़ीड़ी, खन्याह तिखी बहुत पेड़ी, उसी ऊपर है मार्ग मेरा, सेख फरीदा पंथ समार सवेरा, वाट हमारी खरी ओढ़ीणी, खन्याह तिखी बहुत पेड़ी, उसी ऊपर है मार्ग मेरा, सेख फरीदा पंथ समार सवेरा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की, तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरा, बावल होई सो सह लोरा, तै सह मन मह किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोष।

अब रखो दास पाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरणाक्ष फारे कर आज। हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीणत वस्त्र दीन बहु साज। सोदा माया पदा तै राखे आगन का, पड़त पूरे ते काज। श्री सतगुरु सो

0: एक शिव भय एक गए
1: एक फेर भय
0: रामचंद्र कृष्ण के अवतार
1: भी अनेक है
0: ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद
1: और पुराण के ते
0: सिमरत समूहन के होए
1: होए बिते है
0: मोर दी मदार के ते असनी
1: कुमार के ते
0: हंसा अवतार के ते काल
1: बस भय है
0: हंसा अवतार के

धूलो कंकाल चक्रन सबे नाथ नाथ परम भाव मकरन कहा राम कृष्ण कहा चंद सूरन।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना ना जाने मेरा। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु।

बिखाई। माया मोह परम पे फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत

रंग प्रंग अनेक न जपन करत नियंत्र जीव सबके जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर भला।

कोर दुखें अनखद्यं जन्मदारिद्रं जन्मदारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट।

तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार। हर त्यावहु संत हो जी सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाण। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण। हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुज जो करियो रक्षा। राख लिहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आकर्ख करत हो कब हों, तुम मैं मिलत देह धर सब हों। जेते बदन श्रेष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताका

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजिया वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण सवना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरे घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित

होत अपराध करत है जेते। जननी चेतना राखस तेते, रा मैया हों बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा। जे

चिंत पवन मन परियो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवे कबीरा। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। लिख कत है ना छोटी है, खिन खिन भूलन हार। बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परियारे। दर्शन प्यासी दिन सरात, चित बहु अनदिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सुख टल गुर सेविए, एहन सुसहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है, सवना दा विसाह। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सांदे।

हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन मान, जन को पूरन दीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर,

रहाओ बहुत जन्म बिछुरे थे माधव एहो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीव चेर भयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुरे थे माधव एहो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवा

जयत श्री महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे हियर रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरे माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल मार्ग पंथा, हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै।

पुरे अंतर जामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुको कर संतन की तू।

मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो। बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावे, देहो दर्श मन चाओ, भगत एहो मन।

तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला राखो राखण हार दयाला नानक हर के गो।

0: तर तरिया और तर तरिया।
1: सलोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुदा खेला करोड़ सचा सप्तान सचा सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पात साह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
0: वडी वडाई जा वडा ना वडी वडाई जा सच ने आओ वडी वडाई जा ने चल थाओ वडी वडाई जाने आला वडी वडाई बुझे सब पाओ वडी वडाई जा पूछना दात वडी वडाई जा पे आप नान कन कथनी जाए कीता करना सर्ब जाए महला दूजा।
1: एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विच वास एक ना हुक्म समाय ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पहने कड़ ले एक ना माया विच निवास ए पे आख ना जापई जे किसे आने रास
0: नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जी।

0: नानक सतसंगा सतसंगा।
1: सलोक महला पहला। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जीव, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नागे फ्रेजंत, विस्माद पौन, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे वडाणी, विस्माद धरती, विस्माद खाणी, विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, विस्माद भुख, विस्माद भोग, विस्माद सिरत, विस्माद सालाह, विस्माद उजड़, विस्माद राह, विस्माद नेड़े, विस्माद दूर, विस्माद देखै हाजरा दूर, वेख विडान है विस्माद, नानक बुजन पूरे पाग महला पहला।
0: कुदरत दिसे, कुदरत सुनिए, कुदरत पाओ सुख सा, कुदरत पतालिया कासी, कुदरत सर्वे आकार, कुदरत वेद प्राण कतेबा, कुदरत सर्विचार, कुदरत खाना पीना पहनना, कुदरत सर प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत दी जान, कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान मान, कुदरत पौन पानी बैजंत, कुदरत तीखा, सब तेरी कुदरत।

हुक्मे अंदर वेखै वरतै तां को ताक पड़ी अपने भोग भोग है होए फसमड़े पावर सदाया वड्डा हो दुनीदार गल संगल काते चलाया के करने की तवची है

0: करना चाहिए। जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाईए, जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनहू नीच सदाइए। जे जरवाना पर हर जरवेस करें दी आइए, को रहे ना पर ये पाइए, को रहे ना पर ये पाइए।
1: पंथ दिशा नित खड़ी

दीपलवा मंडला खंडावर भंडा अंड जेरज उत्पुजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करता करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ ते सतसी बण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या

0: पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती अर्जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे एक गल होर होमे चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते तो खड़िया बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा फलाया वस्त्र न पहरे निस्कहरे मोन भी गुता क्यों जागे गुरबिन सुता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पद गवाए बिणना में किछ थाई ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंदर जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए नानक नदर करे सो पाए आ संदेश तेने केवल हमें शब्द जलाए।

राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार, कूड़ मियाँ कूड़ बबी खो खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़।

जे कुके वादा गावे जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत जे करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार, जती सदावे जुगत न जाने छड़ बह घर बार, सबको पूरा आपे होवे घट न कोई अखे, पत परवाना पिछे पाये, नानक तो लिया जपे भला।

0: दुख दारू सुखरो पे आजा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं ना ही जाहूं करी ना होई, भले हारी कुदरतो सिया तिरंत ना जाई लखिया रहा, जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूर रहया, तू सच्चा साहिब सिक्स वाले हो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बता, जो किश करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वे शब्दं ब्रह्मणे, खत्री शब्दं सूर शब्दं।

तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना तै बाहर पै देखियत धाम स्यों अपर परम्पर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत।

0: पाए रहे हो मिल राम स्यों।
1: जोत रूप हरिया गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमरत छतर गुर राम महदियो। गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन, मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरे अर्जुन पिखो नैन।
2: अंत न पावत देव सबे मनो, इंद्र महासेव जोग करी। फुन भेद बिरंच बिचार रहो, हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर ज्योत अर्जुन महतरी।
3: सत रूप सत नाम सत संतोख तरियोर, आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर। प्रगट जोत जगमगै तेज भूमंडल छायो, पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो। भन मथुरा मूरत सदा थिर, लाए चित सनमुख रहो। काल जुग जहाज अर्जुन गुरु, सगल श्रेष्ठ लग बेतरो।
4: श्री गुरु साहिब सभी ऊपर करी कृपा, सतयुग जिन ध्रुव पर। श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस कमल माथे पर धरियंग। अलख रूप जी रखिया ना जाई, साधिक सिद्ध सगल सरनाई। गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो। गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ, गुर बिन मुक्त ना होए। गुर नानक निकट बसे बनवारी, तिन रहना थाप जोत जग तारी। रहने पंथ धर्म का किया, अमरदास पल्ले को दिया। तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो, हर का नाम अखै निध अप्यो। अप्यो हर नाम अखै निध चौह जुग, गुर सेवा कर फल रहियं। बंदे जो चरण सरण सुख पावै, परमानंद गुरमुख कहियं। प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखन परनन। सतगुर गुरु सेव अलख

0: अस राखो सरनाई।
1: सुकहु टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। हुवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सत

प्रभु छोड़ आन लागा नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पाओ पंजिया प्रभु छोड़ आन लागा नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पाओ पंजिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कोल गर्भत है संचंत विखया छलं छिद्रं नानक बिन हर संग न चालते राग जैत सरी दी वार दी पौड़ी दसवीं श्लोका नाल

0: द्वापर तपे का सतग रथ वह कल युग रथ बन का पूरक रथ वह महला पहला।
1: साम कहे सैतंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको ससमावे ऋग कह।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम। भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नौ ने दया वैताए। सब थाई हुए सहाय।

दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जने उजी का है ता भांडे कत ना हो टुटे ना मल लगे ना हो जले ना जाए तन सो मन स्नान का जो गल चले भाई चौकड़।

दयाल कृपा करे ता सहकार कराईसी सौ सेवक सेवा करे जिसनु हुकम बनाईसी हुकम बना होवे प्रमाण ता कसमे का मैल पाईसी कसमे पावे सो करे मन होच दसो फल पाईसी ता दरगे पैंदा जाईसी ता दरगे पैंदा जाईसी।

0: पणक देबा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जय त्रंदम हला पहला
1: मानस खाने करी निवाज।

महला पहला जेकर सुतक मनिए सब ते सुतक होए गोहे त लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है धरिया सब कोए सुत क्यों कर रखी है।